0: नमस्ते और आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ और मैं बातचीत कर रही हूँ आज स्नेहा पटेल जी के साथ जो यहाँ मेरे साथ हैं स्टूडियो में। तो स्नेहा जी, पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने बहुत लोगों को कल्चरल डांस ड्रामा ये सब प्रमोट करते हुए सुना है, ठीक है, तो आपका ये लैंग्वेज प्रमोशन, कल्चर तो आप प्रमोट करते ही हैं बट संस्कृत और बाकी के लैंग्वेजेस जो इंडियन लैंग्वेजेस आप प्रमोट करती हैं, इसका सफ़र कैसे शुरू हुआ? पहले ये बताइए आपका ऑस्ट्रेलिया आना कैसे हुआ?
1: वीणा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में आए हुए तकरीबन 18 साल हो गए। तो जब मैं आई उसके पहले मैं इंडिया में भी ये सारी चीज़ें करती थी।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं आई वॉज़ वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विथ डांस और म्यूज़िक, तो मेरे घर में एक ये परंपरा है जो कि आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस ऑनर ऑफ हैविंग द हेरिटेज पास्ड ऑन फ्रॉम माय ग्रैंड पेरेंट्स एंड माय पेरेंट्स। तो मेरे दोनों दादाजी जो है दे हैव बीन इन एकेडमिक्स एज वेल, दे हैव बीन प्रोफेसर एंड लवर्स ऑफ संस्कृत लिटरेचर एंड लैंग्वेज, इंग्लिश और मैथ्स और साइंस के टीचर और प्रोफेसर होते हुए भी वो बंक करके अपने ज़माने में संस्कृत के क्लास अटेंड करने जाते थे कॉलेज में।
0: wow.
1: तो शायद बचपन से ही ऐसा एक माहौल घर में था कि भाषाओं के लिए, संस्कृति के लिए एक अलग प्यार था। और डांस के लिए भी जो प्यार था, एज अ फोक डांसर मेरे काफ़ी शोज़ होते थे, स्टेज परफॉर्मेंसेस होते थे दूरदर्शन पे। आई एम टॉकिंग अबाउट अ टाइम व्हेन देयर वाज नो इंस्टाग्राम, फेसबुक एट्सेट्रा, एंड वी

0: used to have all this recordings in the Doordarshan studio, right?
1: हाँ, ये मैंने देखा हुआ है.
2: हम लोग वेट करते थे ना कि हमारे, हम भी, मैं जब छोटी थी कहते थे कि यार तुम करोगी तो फिर तुमको भी हम लोग दूरदर्शन भेजेंगे.
0: और ये जो लाइव होता था कि मैं इस जगह पे पहुंच चुकी हूँ और मैं ये करने वाली हूँ, ये कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं. तो वी यूज टू वेट फॉर अवर रिकॉर्डेड शोज टू बी ब्रॉडकास्टेड एंड वो एक अलग ही उसका मज़ा था. तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई तो सबसे पहले तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगा कि ये चीज़ मैं कंटिन्यू कैसे करूं, क्योंकि मैंने बहुत शिद्दत से 7 साल तक संस्कृत पढ़ा है. और वो पढ़ने के बाद पीएचडी कंटिन्यू करने या परस्यू करने के लिए मुझे यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली. तो मैं बैंकिंग में लग गई. और वेरी फॉर्चुनेट एक्चुअली कि ऑस्ट्रेलिया ने मुझे बहुत कुछ दिया है. और मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं भी अपनी कम्युनिटी को कुछ मीनिंगफुल वापस दे सकूं. तो थोड़े तो साल लग गए. एंड द रीज़न वाई एम सेइंग ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड कंट्री टू लिव इन, क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ माई एकेडमिक बैकग्राउंड एंड माई डिग्री, आई स्टिल गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट माई बैंकिंग करियर विथ वन ऑफ द टॉप 4 कंपनीज हियर. एंड देन इवेंचुअली आई कार्ड माई नीश एंड माई वे एज अ मॉर्गेज, लाइक अ लैंडिंग मैनेजर, एंड देन वेरियस हैड्स, वेरियस रोल्स, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो वो करती रही. एज अ फाइनेंशियली, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात हम करें तो कंपेरेटिवली ऑस्ट्रेलिया में देर इज़ लॉट ऑफ स्कोप एज वेल. सो एज अ फर्स्ट होम कोच आई हैड द प्रिविलेज टू रन दिस वर्कशॉप्स एंड हैव द फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स फॉर द बायर्स, फर्स्ट होम बायर्स हु वॉन्ट टू गो इन टू द मार्केट, फॉर इन्वेस्टर्स टू अंडरस्टैंड हाउ इक्विटी वर्क्स एंड दैट स्टफ. बट वो हम थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे अपने कन्वर्सेशन से. तो coming back to what I was talking about, ki my contribution has always been centered around promoting Indian languages, literature and culture while creating opportunities for people of all ages to stay connected with their roots. To is koshish mein mujhe sabse pehla breakthrough mila, again through dance I joined an institution, and then little bit of anchoring and little bit of being associated with an organization jahan pe mujhe ek room mila jahan pe main bachcho ko padha sakun aur bado ko bhi संस्कृत पढ़ा सकूं. तो थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस वापस आया कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे भी पॉसिबल है. एंड देन द जर्नी स्टार्टेड स्टेप बाय स्टेप, वेरी लिटिल स्टेप्स आई वुड से, बट कहीं ना कहीं मुझे वो मौके मिलते गए. और एक ब्रेक आता है कभी ना कभी बिकॉज ऑफ द किड्स एंड मैटर्निटी एंड कोविड, तो स्टेप बैक्स आते हैं एंड यू टेक अ बैक सीट समटाइम्स फॉर न्यूमरस रीजंस. बट मैं और भी बातें करूँगी, बताऊँगी कि मेरा जर्नी कैसा था. तो ये बहुत ही आनंद की बात है मेरे लिए कि मुझे भाषा प्रमोट करने के लिए एक ये जो प्यार है, इंग्लिश तो है ही है बिकॉज इट्स अवर प्राइमरी लैंग्वेज इन दिस कंट्री. गुजराती क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है. तो जननी और जन्मभूमि, ये स्वर्गादपि गरीयसी, ये तो आपको पता ही है कि अपनी भाषा, मातृभाषा, माता, मातृभाषा, मदरलैंड, इसका प्यार तो होता ही है. और संस्कृत, उसका मैंने आपको बता दिया.
2: हाँ बिल्कुल. नहीं, संस्कृत मैंने बहुत कम लोगों से सुना है कि वो संस्कृत सिखाते हैं, तो हम इसके बारे में और बात करेंगे. और मैं जानना चाहूँगी कि अभी भी आप करती हैं या आपका कोई प्लान है वापस लोगों को संस्कृत सिखाने का, तो फिर आप मेरा नाम भी लिख लें उसमें क्योंकि मैं ज़रूर सीखना चाहूँगी. क्योंकि जो श्लोक हम पढ़ते हैं वो सारे तो संस्कृत में होते हैं, तो वो श्लोक का मतलब समझना भी मुझे कभी कभी, अगर संस्कृत में समझाए तो उसका उच्चारण भी अच्छा आता है. अगर आप संस्कृत सीख रहे हो तो उसका उच्चारण भी अच्छा आता है. तो हम और इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अगला गाना आपका आपका पसंदीदा केके का यारों सुन लें, फिर उसके बाद वापस आके हम बात करेंगे इसके बारे में.
0: थैंक यू.
3: Alive 90.5.
2: क्या आपकी आयु 65 साल या इससे अधिक है? इस बार सर्दियों में गंभीर रोगों से अपनी और दूसरों की रक्षा करने के लिए टीकाकरण करवाएं. आपके लिए कौन सा टीका सही है, इसके बारे में अपने जीपी या फार्मासिस्ट से बात करें.

0: Wexpo runs Western Sydney premium events and expos that bring together business leaders, community organisations and innovators to connect, learn and grow. Held at venues across the region, iEvents include exhibitor opportunities, expert panels, workshops and networking opportunities designed to spark ideas and build success. For all upcoming Wexpo events, visit wexpo.com.au. Wexpo is backed by the region's leading media organisation Community Broadcast Network with 5 newspapers published across Western Sydney. Station sponsor.
1: Adriano Coluccio Funeral Services is an Australian-owned and operated funeral home providing dedicated, dignified, versatile and professional funeral services, assisting community members in their time of grief and loss, regardless of ethnicity and religion. Our commitment and compassion is dedicated to setting the highest standard in funeral professionalism and supporting families through what is the most difficult time of their lives. Located in Smithfield and Miranda, servicing all Sydney areas, Adriano Coluccio Funeral Services, always with you. 9604 9604. Station sponsor.
2: गुड आफ्टरनून और आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ और मैं आज बात कर रही हूँ स्नेहा जी के साथ जो हमें अभी बता रही थी उनके लैंग्वेज लव फॉर लैंग्वेज के बारे में भाषा के बारे में बता रही थी और तो मैंने उनको लास्ट पूछा पिछला जब ख़त्म होने से पहले मैंने उनको पूछा कि आपका नेक्स्ट लैंग्वेज प्रोजेक्ट क्या है आप क्या इस एरिया में आप क्या कर रही हैं
3: तो वीना जी एज अ वॉलंटियर you know I would call myself an ambassador for our culture and language kyunki each one of us in our own unique ways carry that cultural pride to hum sabhi ek tarah se ambassadors hai in this beautiful country that we call home तो मुझे बहुत खुशी मिलती है जब बच्चे और युवा हमारी भाषा और परंपरा से जुड़ते हैं थ्रू कल्चरल प्रोग्राम्स गरबा वर्कशॉप्स स्टेज होस्टिंग परफॉर्मेंसेस एंड कम्युनिटी इवेंट्स आई हैव ट्राइड टू बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन जनरेशंस एंड सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ इंडियाज़ रिच हेरिटेज इन ऑस्ट्रेलियाज़ मल्टीकल्चरल सोसाइटी एंड वेरी ग्रेटफुल टू दिस कंट्री फॉर बींग सो एक्सेप्ट showing that resilience and acceptance of different cultures and celebrating diversity across the world. तो जो languages की बात मैं कर रही हूँ उसमें संस्कृत अभी मैं पढ़ा तो नहीं रही हूँ there are a lot of things that I have done which currently I must say I'm not necessarily doing all of them but मेरा प्रयत्न हमेशा से यही है कि मैं कुछ कर पाऊँ तो जैसे कि मैंने बताया कि professionally as a mortgage lender and finance manager I also used to conduct financial literacy sessions to help families make informed decisions about home ownership और मेरे लिए community service सिर्फ cultural activities तक सीमित नहीं है it's also about empowering people with knowledge and confidence. So in a way, if we keep doing those things, then there's very little time left for promoting the language and, you know, following your passion. So of course, uska maine ek thoda backseat leke from my professional world, I have started promoting the language more by associating myself with an organization jo ki Gujarati language aur literature par focus karta hai saal mein kafi bar at every regular interval of a few months ek event organize karta hai jisme मातृभाषा महोत्सव या वर्ल्ड लिटरेसी डे गुजराती लैंग्वेज और लिटरेचर को प्रमोट करने जैसी काफ़ी सारी चीज़ें हम करते हैं और उसमें बच्चे बड़े सब एक एक एक साथ उत्साह के साथ जुड़ते हैं उसमें ड्रामा स्किट परफॉर्मेंसेस वक्तृत्व और काफ़ी सारी चीज़ें हम कवर भी करते हैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने से मेरा ये एक बहुत ही छोटा सा प्रयत्न है कि मैं अपनी कम्युनिटी को कुछ वापस दे सकूं वाइल्स्ट लिविंग माय ओन पैशन एंड यू नो फॉलोइंग द थिंग्स दैट आई ऑलवेज wanted to do and at the same time it's giving something back to the community hum apni aane wali peedhi mein bhi ye dekh sake ki unka bhasha ke sath judna ek directly related to sanskriti ke sath judna culture ke sath judna apni paramparao ke sath judna to ye mere liye bahut hi mahatv ki baat hai
2: na ye ye aapne bahut sahi kaha hai kyunki जब हमारे बच्चे हमारी भाषा, क्योंकि आजकल तो मुझे लगता है कि अगर दो तीन भाषा अगर हम जानते हैं तो ये एक्चुअली एक स्ट्रेंथ है. पहले बीच में क्या हो गया था, जैसे इंडिया में, इंडिया की भी बात कर रही हूँ, इंडिया में जैसे इंटरनेशनल स्कूल्स आने लगे तो हमारे बहुत सब लोगों का फोकस होने लगा, सब लोग अंग्रेजी में बात करो, तो वो जो मातृभाषा में बात करना या फिर उसको जानना एक थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, थोड़ा एक रेजिस्टेंस आने लगा युवा पीढ़ी में.
3: जी,
2: हमारे लिए तो ये होता था कि हमारे दादा नानी होते थे जिनके जिनको मिलने जाना तो जरूरी था हमारे लिए, है ना. हर समर में तो हम जाते ही जाते थे, दो महीने की छुट्टी एक नानी के यहाँ पे होता था, एक दादी के यहाँ पे होता था.
3: जी,
2: और वहां अगर हमने अपनी मातृभाषा में बात नहीं की तो पढ़ती थी दो कि ये कौन सी भाषा में बात कर रही है. तो
3: और आजकल हम एक यूनिक पैटर्न देख रहे हैं कि हम अपने बच्चों के साथ अपनी भाषा में बात कर रहे हैं और हमें रिप्लाई मिल रहा है इंग्लिश में, और दैट इज न्यू नॉर्म दैट वी हैव एक्सेप्टेड कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल ही है कि हम दो भाषाओं का साइमल्टेनियस यूज करते हैं. जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ आपसे हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल हिंदी में बिल्कुल गुजराती या शुद्ध हिंदी शुद्ध गुजराती में बात करने लगूं तो शायद हमारे नेटिव स्पीकर्स ही होंगे जो बोलेंगे कि भाई ये कौन से
2: थोड़ा भारी हो गया,
3: हाँ ये थोड़ा बहुत भारी हो गया, ये रामायण या महाभारत देख रहे हो ऐसा लग रहा है. इसलिए कोशिश यही रहती है कि थोड़ा ईजी फ्लो में बात करें तो ऑडियंस कनेक्ट हो पाए.
2: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, आप ये बात तो आपने सही कहा है, लेकिन ये जो भाषा के बारे में, क्योंकि मैं अपनी बेटी को भी मैं देखती हूँ कि हम घर में तमिल में बात करते हैं, मेरी सास को तमिल ही समझ में आता है, तो हमने मेक श्योर किया कि भाई उसको तमिल आए. लेकिन अभी उसको ये है कि मैं और मेरे हस्बैंड जब उसको कुछ जानना नहीं होता ना तब हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि उसको हिंदी समझ में नहीं आती गानों के अलावा तो लेकिन ये एक ट्रेंड हो रहा है, जो चेंज हो रहा है. तो आई थिंक अभी हम जैसे लोग अगर प्रमोट करेंगे और ज़्यादा बात करेंगे इसके बारे में तो इसका असर भी हमारे युवा पीढ़ी पर ज़्यादा पड़ेगा और वो चाहेंगे कि वो हमारी मातृभाषा में भी बात करें, उनकी मातृभाषा में भी बात करें.
3: तो हम इस संस्कृत क्योंकि बहुत ही एक साइंटिफिक लैंग्वेज भी है, तो मैं इसके बारे में आपसे थोड़ी ज्यादा बात करूँ.

0: हेलो, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द इंडियन कनेक्ट. एंड मैं वीना शशि कुमार, मैं आज बात कर रही हूँ स्नेहा पटेल जी के साथ, और हम बात कर रहे थे लैंग्वेजेस के बारे में, संस्कृति के बारे में, और ये कैसे प्रमोट करती हैं उसको. एंड तो स्नेहा जी बताइए, इन टर्म्स ऑफ योर, अभी तो सीजन, हमारा फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ है इंडिया का
1: जी,
0: है ना, तो आपका लाइफ तो काफी बिजी हो गया होगा.
1: लाइफ तो काफी बिजी हो ही जाता है, और वीकेंड या वीकडे में कोई डिफरेंस ही नहीं रहता, इतना ज्यादा बिजी हो जाता है. सो मैं तो यही कहूंगी कि जब हम ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में आ चुके हैं, आ गए हैं, इसको अपना घर बना लिया है, और यही है कि ऑब्वियसली बिकमिंग एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन डज नॉट मीन यू डू नॉट कैरी फॉरवर्ड योर कल्चर, राइट?
0: सो
1: अलॉन्ग विथ कंटिन्यूइंग टू बी यू नो वेरी प्राउड ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, वी आर ऑल्सो डीपली एसोसिएटेड विथ our country of birth as well. तो ये सारे जो functions होते हैं, events होते हैं, it's like, you know, embracing and integrating into the Australian society and its values, along with you know, being our cultural ambassador of our cultural heritage and identifying with our country of birth. मैं आज एक expo हो रहा है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी. रोजल में भारत हेरिटेज एक्सपो,
0: मैंने सुना तो था, फेसबुक में देखा था इसके बारे में. हाँ,
1: ये हो रहा है रोजल रेसकोर्स में, एक्चुअली 12 बजे से शुरू हो गया है. तो इफ योर लिसनर्स वांट टू जॉइन, इट इज हैपनिंग एट रोजल रेसकोर्स एंड इट्स द बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल. तो फेस्टिवल की तैयारियां शुरू हो गई है ऑलरेडी. नवरात्रि, दिवाली, नवरात्रि तो गुजराती लिसनर्स को भी शायद पता ही होगा कि काफी सारे इवेंट्स हो रहे हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये बार डिसाइड किया कि मैं एक गरबा इवेंट जाऊंगी तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगी कि अगर आपको कोई अच्छा वाला गरबा इवेंट पता हो तो मुझे ज़रूर बताएं, तो हम जाएं. मतलब मैंने एक क्या कहते हैं, घाघरा चोली खरीद के रखा हुआ है, वो पहनना तो ज़रूरी है.
1: सी, आर्टिस्ट बहुत होते हैं और बहुत से आर्टिस्ट बहुत अच्छे भी होते हैं. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू गो देयर एज अ ग्रुप एंड एंजॉय, क्योंकि आपकी कंपनी, इट मैटर्स अ लॉट.
0: बिल्कुल.
1: तो हम एक अच्छे से गरबा इवेंट में साथ में जाएंगे, जहां हम मन भर के बस गरबा करेंगे.
0: आप मुझे सिखा देना. हाँ, मैं सिर्फ, मेरे को गरबा करना आता तो नहीं है, आप सिखा देना, क्योंकि आप वर्कशॉप करती है तो फिर मैं आपके साथ सेफ हूँ.
1: पक्का पक्का, दैट इज फॉर श्योर. आप और कुछ बताना चाहेंगी कि इंडिया के बारे में?
0: नहीं, मैं एक्चुअली आपका, आप जो ये काम कर रही हैं इसको काफ़ी सराहती हूँ, क्योंकि ये एक जो यहाँ आके, देखिए फुल डिस्क्लोजर, जो जब यहाँ आके जब हिंदी में बात करना पड़ता है, क्योंकि रोज़ रोज़ हम बात नहीं करते, जैसे आप कहती हैं ना, रोज़ रोज़ हमारे, हमारा बात हिंदी में नहीं होता है, क्योंकि ऑफिस में तो इंग्लिश में ही चलता है, घर में भी हमारे बच्चे सिर्फ इंग्लिश में जवाब देते हैं, तो फिर इनवेरिएबली उनके साथ इंग्लिश में ही बात हो जाती है
1: जी.
0: क्योंकि वो जवाब इंग्लिश में देते हैं, फिर हमारा वापस सवाल, नेक्स्ट सवाल तो हमारा इंग्लिश में ही आता है ना, अपनी लैंग्वेज में तो आता नहीं है.
1: और यही मेरा मोटिवेशन है कि साइंटिफिकली इट्स बिन प्रूवन कि बीइंग मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंग्विस्टिक, मल्टीलिंगुअल has a different bifurcation of your nervous system in your brain, right? तो आपकी सोच, आपके विचार, आप उसको कैसे प्रकट करते हो, compared to a person who is monolingual, वो different होता है. And academically also it can be more, it can prove to be more successful. तो मैं यही कहूँगी कि जो ये साइंटिफिकली प्रूवन लैंग्वेज है संस्कृत, कंप्यूटर्स के लिए सबसे बेस्ट है, उसकी वजह से आपके उच्चारण भी उतने शुद्ध होते हैं कि आप और लैंग्वेजेस भी इजीली सीख सकते हो. वर्ल्ड की 25% वोकेबुलरी उस भाषा से आई है. तो और भी भाषाएं सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप स्पेनिश, चाइनीज, मैंड्रिन और भी सारी भाषाएं सीख सकते हो, लेकिन हमारी हिंदुस्तानी भाषाएं, तमिल है, मराठी है, काफ़ी सारी भाषाएं सीख सकते हो, है ना? तो कोशिश तो यही है कि बच्चे जितना हो सके उतनी ज़्यादा चीज़ें सीख सके, अपने रूट से कनेक्टेड रह सके, और ऐसी कोई भाषा जिसमें सिर्फ ना उसको मृत प्राय बोले, देव भाषा, बट आगे जाके जो बोलते हैं उसका अर्थ भी समझे.
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम इसके बारे में और थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा हमेशा एक ये रहता है कि हम हमारे भाषा के बारे में ज़्यादा बात करें, ज़्यादा जानें और इसके बारे में ज़्यादा समझे भी, क्योंकि हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो हम बात कर रहे हैं हमेशा हमारे दिमाग में घुस रहा है है ना. कुछ लोग मैंने देखा है कि जो भाषा पढ़ते हैं लेकिन उनको उसका कोई मतलब पता नहीं होता.
1: Exactly.
0: है ना. तो ज़रूर, बट थैंक यू सो मच आपका जो ये इनिशिएटिव्स है इसके बारे में बात करने के लिए, इधर आके अलाइव में आके मेरे साथ आमने सामने बैठ के बात करने के लिए. आपको टाइम तो लगा होगा, सैटरडे का ट्रैफिक अब हम जानते हैं. आपका तहे दिल से शुक्रिया यहाँ आके बात करने के लिए मेरे साथ.
1: नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मुझे बुलाने के लिए. मैं दिल से आभारी हूँ कि आपने मुझे अपनी कहानी और अपना सफ़र आपके श्रोताओं के साथ बांटने का मौका दिया और मुझे उस लायक समझा. सो थैंक यू वंस अगेन. आई एम ट्रूली अप्रिशिएटिव एंड ग्रेटफुल फॉर दी अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई जर्नी विथ योर लिसनर्स. थैंक यू
0: सो मच. And hopefully we will talk a little bit more at some other point in the future. Because I can see that you are working to a lot in the space, and मेको और जानना चाहती हूँ कि आप क्या कर रहे हो आपके projects के बारे में. लेकिन उसके बारे में हम एक और दिन निकालते हैं, एक घंटा कम में. और हम बात करना शुरू करें तो करते ही रहेंगे.
1: Yes, thank you so much.
0: So that was Sneha ji, और उन्होंने अपने अपना जो initiatives है सिडनी में इसके बारे में बात कर रही थी. तो thank you so much for coming and listening to her. अगर आपका कोई सवाल हो इनके लिए तो मुझे ज़रूर भेजें और Alive को भेजें, या फिर आप किसी को जानते हैं जो आके हमारे शो में हमारे साथ उनकी जर्नी शेयर करना चाहता है तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें. आप Alive के वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकती हैं या फिर हमें टेक्स्ट कर सकती हैं. नंबर है 0405905905, या फिर आप ईमेल कर सकती हैं अलाइव को उनके वेबसाइट में जाके, जो है alive905.com.au. और इसी के साथ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अच्छा, अगर आप स्नेहा जी से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप उनके इंस्टाग्राम स्नेहा लाइव
1: स्नेहा पटेल अंडरस्कोर ऑफिशियल अंडरस्कोर
0: है इनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल, तो आप उसमें से इनको कॉन्टैक्ट कर सकती हैं. और जाने से पहले, ये सेक्शन ख़त्म होने से पहले, मैं एक और चीज़, हमारे जो फेसबुक ग्रुप्स में से एक इंडियन फेसबुक ग्रुप में से मुझे पता चला कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी तो ऑस्ट्रेलिया में आया नहीं है, या फिर उनकी इनकी सिर्फ शुरुआत हुई है, लेकिन गोपीनाथ मुत्तुकड जो एक मलयाली मैजिशियन है, इंडिया के मैजिशियन है, वेरी वेल नोन मैजिशियन, जो ऑलमोस्ट 44 इयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं मैजिक, अभी उन्होंने एक नया एक आर्ट सेंटर खोला है. इट्स कॉल्ड डिफरेंट आर्ट सेंटर, जो है त्रिवेंद्रम में, और वहाँ ये डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को मैजिक सिखाते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म सिखाते हैं ताकि वो परफॉर्म कर सकें. तो इसके बारे में मुझे लगा कि सबको बताना चाहिए. और इसके ये एक और फ्री है एंट्रेंस, इनका जो सेंटर है इनको यहाँ एंटर करना फ्री है, और आप वहाँ जाके उनको मिल सकते हैं, उनका शोज़ देख सकते हैं. तो ये बहुत ही उमदा काम कर रहे हैं इस एरिया में और उनको बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं. तो इसके अलावा एक चीज़, अभी अगस्त आ रहा है, 5-6 दिन में अगस्त आ जाएगा, और अगस्त में तो पहला सबसे बड़ा चीज़ जो होने वाला है वो हमारा 80th इंडिपेंडेंस डे आ रहा है. 80 साल हो गए हैं इंडिपेंडेंस को, तो 16 अगस्त को इसका एक सेलिब्रेशन हो रहा है डार्लिंग हार्बर में. संडे है, ICC डार्लिंग हार्बर थिएटर ICC में हो रहा है. एंट्री फ्री है लेकिन रजिस्टर करना ज़रूरी है. तो इंडियन कॉन्सुलेट जनरल के वेबसाइट में जाएं और रजिस्टर करें. इसके अलावा एक अलग अलग जगह पे इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, जो 15 अगस्त को एक ग्रेट इंडियन कार्निवल हो रहा है वेंटवर्क पार्क में. कलोनियल सेलिब्रेशंस हो रहे हैं डार्लिंगहर्स्ट में. तो आप जाके पता करें, और फेसबुक में अगर आप एक मैसेज डालेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस डे इवेंट तो बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं, तो ज़रूर जाके देखें इसके बारे में. और अगर आपको कुछ पता चले जो मैंने बताया नहीं है तो मुझे भी ज़रूर बताएं, कि ताकि मैं बाकी लिसनर्स के साथ भी शेयर कर सकूँ इसको. तो अगला एक और मैसेज के बाद हम विदा लेंगे.
2: Alive 90.5.
0: आपकी वार्षिक फ्लू वैक्सीन आपको गंभीर रोगों से सुरक्षित रखता है. आज ही अपने जीपी या फार्मासिस्ट से इसके बारे में बात करें. healthdirect.gov.au/nsw-flu-vaccine पर जाएं.
3: Transform your home with Hartwood Floors. Proudly family owned for over 30 years. From solid timber, parquetry, laminate and hybrid flooring to expert resanding and polishing. Discover premium plantation shutters and blinds. Visit our Seven Hills showroom today and experience quality craftsmanship with personalised customer care. Hartwood Floors, where tradition meets innovation and every detail matters. Visit us at www.hartwoodfloors.com.au. Station sponsor.
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
5: Around the world.
2: Around the globe.
5: Streaming live 24/7.
2: Alive905.com.au.
6: The 2026 Census is coming this August. The Census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
0: हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडिया कनेक्ट. मेरे वीना शशि कुमार के साथ आज अभी तक मेरे साथ है मेरे स्टूडियो में स्नेहा पटेल जी, और उन्होंने अपनी जर्नी, यहाँ ऑस्ट्रेलिया की जर्नी और अपना जो इंडिया की जर्नी और वो क्या करती हैं या इसके सब के बारे में हमारे साथ शेयर किया. और होपफुली आप कनेक्ट करेंगे इनके साथ और इनसे और जानकारी लेंगे, क्योंकि मैं इसके बाद इनके साथ और बातचीत करूँगी. बट तो थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए और बात करने के लिए हमारे साथ.
1: नहीं, थैंक्स फॉर हैविंग मी.
0: और मैंने पिछली बार भी ऐसे लोगों को इनवाइट किया था जो मैं जानना चाहती हूँ, जो इंडिया में या फिर यहाँ जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ और उनसे बात करना चाहती हूँ. तो अगर आप किसी और को जानते हैं जो ये शो में आके हमारे साथ बात करते हैं, उनकी जर्नी शेयर कर चाहिए या फिर वो क्या कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए या फिर उनका कोई प्रोजेक्ट है जो वो कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, उसके बारे में आके बात कर सकें, तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव बनेगा कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, ना कि सिर्फ आपके प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए या ये बताने के लिए कि हम कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं. क्योंकि मुझे लगता है एज़ जो हम कर्म भूमि में आते हैं, हम इसको काफ़ी सीरियसली ले लेते हैं और हम ना सिर्फ अपना चीज़ ही नहीं, कम्युनिटी के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं. तो ये हम यहाँ कर भी पाते हैं, यहाँ जैसे इंडिया में करना, क्योंकि शहर भी बड़ा है, जहाँ भी रहते हैं शहर बड़ा होता है, लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ करना और एग्जीक्यूट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है मुझे कभी कभी, क्योंकि मैंने वहाँ भी काम किया हुआ है. तो लेकिन यहाँ करना कभी कभी काफ़ी आसान होता है. तो आप अगर कोई कर रहा है तो उसके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी और उसके बारे में सबको बताना चाहूँगी कि ये हो रहा है हमारे कम्युनिटी में. जैसे सफ़र क्लब, बहुत लोगों ने अभी सफ़र क्लब शुरू किया है. पिछली बार मैंने इंस्टाग्राम में उनको फॉलो करना शुरू किया और इतने सारे सफ़र क्लब, अभी मुझे लगता है कि मेरा वेट बढ़ जाएगा फेस्टिवल सीजन के पहले कि इतने सफ़र क्लब्स में अगर चली जाऊँ तो. तो लेकिन ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है कि लोग हम सब मिलके कुछ दूसरे लोगों से मिले, दूसरों की जैसे वो इतना अच्छा खाना बनाते हैं, सबका डिफरेंट डिफरेंट जो क्विजींस है वो ट्राई करने को मिलता है. इसके अलावा मैं एक चीज जो बात करना चाहती हूँ, और ये आई थिंक सारी महिलाओं के लिए काफ़ी फिट बैठता है, क्योंकि हम एज विमेन बहुत सारे हैट्स पहनते हैं और सब चीज़ में हमें अच्छा होना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि एज विमेन वी हैव टू डू एवरीथिंग एंड वी हैव टू डू इट वेल. तो एक मेरे मैंने रिसेंटली सुना जो जिसमें कहा था कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, और मैंने सुना ये एक अधूरा सेइंग है, क्योंकि पहले मेरे को बोला जाता था कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ये तो मतलब यार तुम सब चीज़ करती रहती हो, सब किसी में तुम आगे नहीं बढ़ रही हो. लेकिन जो पूरा सेइंग है वो ये है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन येट बेटर देन मास्टर ऑफ वन. तो ये एक्चुअली एक कॉमेडियन ने शेयर किया था, राहुल दुआ जी ने, और उन्होंने कहा था ये इंसल्ट ने ले लिया यू टर्न और ये बन गया एक कॉम्प्लीमेंट. तो एज विमेन ये जैक तो नहीं बोलूंगी मैं, क्वीन ऑफ ऑल बोलूंगी. तो क्वीन ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन चलेगा, बट वी आर बेटर देन मास्टर ऑफ वन. तो विद दैट थॉट आई वुड लाइक टू एंड टुडे सेशन, एंड थैंक यू जिन्होंने भी ट्यून इन किया सुनने के लिए. और आप अगले हफ्ते मुझे ज्वाइन करें, क्योंकि अगले हफ्ते आ रही है कहानी नानी. तो हम अगले हफ्ते बात करेंगे.
7: डाइव इनटू द लेटेस्ट न्यूज़ विद ऑज अरब मीडिया. Your premier destination for the latest events, captivating stories, and rich insights from the Arab world and Australia. Stay informed, inspired, and connected. Download the app or tune in to our platforms today. Oz Arab Media, bridging cultures, connecting communities.
8: Something's changed with Mum lately. You're not sure what to do. She wants to stay home. She can, with the right support. We're a small, dedicated home care team. Nursing, personal care, overnight stays, post-hospital care. We can usually be there within the week. One call, no pressure. We'll work out her needs together. Call Santa Clara on 02-811-8121. That's 02-811-8121. Santa Clara Home Care, care that feels like family.
9: Station sponsor.
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.